डीजी प्रसानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। बात करते हैं गुड हैबिट्स की, यानी अच्छी आदतों की। हाँ, और जब अच्छी आदतों की बात आती है तो आप कहते हैं सताक्षी ये बच्चों वाली चीजें तुम हमें क्यों बता रही हो, मतलब अच्छी आदतें तो हम बच्चों को सिखाते हैं, भला हम क्यों सीखें। तो देखिए जनाब, आप भी बच्चों से कम नहीं है, क्योंकि सारी बुरी आदतें तो आप में ही है। टाइम पर ना उठना, ढेर सारी चाय और कॉफी पीना, एक्सरसाइज ना करना, देर तक सोते रहना, कुछ भी अनशन खा लेना, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी बैड हैबिट्स ही कहलाती हैं, बुरी आदतें। और बहुत जरूरी है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, एक बढ़िया जिंदगी चाहते हैं, तो अच्छी आदतों को डालें। हाँ, तो मैंने आपकी सारी बुरी आदतें तो गिनवा दी, अब अच्छी आदतें क्या होती हैं आपको बेटर पता है। तो चलिए अच्छी आदतों के नाम ये अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस सताक्षी के साथ।

करते हैं एक बढ़िया से हार्मोन की जो आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है और इस हार्मोन का नाम है एंड्रोफिन। जी हाँ, एंड्रोफिन जब एक्टिव हो जाता है तो इसका काम ही है कि आपके तनाव को यानी कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है और आपके मूड को एक्टिव कर देता है। और इसे एक्टिव करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा खुद पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि आप पुशअप कर सकते हैं, है ना, मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे तो भी आपका एंड्रोफिन एक्टिव हो जाता है। सुबह उठते ही अगर आप हाइड्रेट हो जाएं तो भी आप एक अच्छे मूड को जो है वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे और आप दूसरों को भी बेहतर महसूस करवाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हमारा मूड अच्छा तो सबका अच्छा और जब हमारा खराब तो सबका खराब, है ना। तो वो वाली स्टेज ना आए इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एंड्रोफिन जो है वो खुद की बॉडी में रिलीज करें, उसे एक्टिव करें ताकि हम स्ट्रेस फ्री हो सके। और इसी बात पर अभी हम सुनते हैं एक और ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे। Keep listening to Radio Braswani 1701 AM, आप सुन रहे हैं It Happens, आपके साथ है सताक्षी।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हैपेंस एंजॉय करें आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। आपके इट हैपेंस में इस वक्त हम आपसे कर रहे हैं आपकी जिंदगी की कुछ खास और बेहतरीन बातें। जहाँ देखा जाए तो हमारी जिंदगी के लिए हमारे पास सबसे कम वक्त होता है, और वक्त किसके लिए होता है? हमारे करियर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, है ना। लेकिन उसमें भी हम अक्सर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, यानी कि कुछ भी डिसाइड करने की जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, वो सही ना होना। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, जो थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, फोकस। जी हाँ, जब आपका फोकस कम होगा, आपका फोकस अच्छा नहीं होगा, तो आप डिसीजन मेकिंग में कभी अच्छे नहीं होंगे। डिसीजन मेकिंग वही अच्छी कर सकता है जिसे सबसे पहली बात तो खुद पर भरोसा होता है, और दूसरी बात उसका मूड बढ़िया होता है, वो स्ट्रेस फ्री होता है, वो फोकस कर पाता है अपनी चीजों पे। सो बहुत जरूरी है कि अगर आप लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर फोकस करना सीखिए। और एक और ट्रैक अभी सुनिए मेरे साथ इसी बात पर। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

सुन रहे हैं आप मेरे साथ, जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपेंस, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों कि हम बड़ा सोचने से डरते हैं, मतलब हमें लगता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं हमें उनके अंदर ही सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं आप बड़ा करेंगे कैसे? इसलिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। तो अपने रिसोर्सेज से निकल कर सोचिए, आप उसके बियॉन्ड जो कर सकते हैं उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि यार हम इतने से पैसों में या इतने से रिसोर्सेज में हम क्या ही कर लेंगे। हाँ, बस ये है कि सिर्फ सोच के हमें नहीं बैठना है, फिर हमें वो सब करना है जो हमें इन रिसोर्सेज को जुटाने में हेल्प कर सके, हमें हमारी मंजिल तक लेकर जा सके। और उसी का नाम होता है दिन रात पैशन के साथ मेहनत करना। इतिहास गवाह है कि अब तक जितने लोगों ने इतिहास रचा है ना, वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा हुए थे, उन सब ने मेहनत के दम पर ही इतिहास के गोल्डन लेटर्स में अपना नाम दर्ज कराया है, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम आज दर्ज है। सो जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, बस आपको अपने रिसोर्सेज के बियॉन्ड सोचने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। एक और ट्रैक इसी बात पर एंजॉय कीजिए सताक्षी के साथ, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ इस वक्त सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग कई खूबसूरत और बेहतरीन गाने भी। लाइफ में अक्सर हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते दोस्तों। जब भी लाइफ में हमारी कोई चेंज आता है तो हमें परेशान कर देता है, हमें लगता है कि हम तो चेंजेस के लिए बने ही नहीं गए, क्योंकि हम सबकी आदत है ना, हम सब एक स्मूथ लाइफ जीना चाहते हैं। जो जैसे जिस ढर्रे पे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे, जब तक उसमें कोई डगमग ना आए, है ना, हम उस ढर्रे को छोड़ना नहीं चाहते, हम उससे हटना नहीं चाहते। बट द ट्रूथ इज कि बहुत जरूरी है लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना। आपकी लाइफ में जब बदलाव आता है, जब चेंजेस आते हैं, तभी आप लाइफ में बेसिकली कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज हम वही सब में अटके रहते हैं कि यार जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। लेकिन ऐसे आप जिंदगी में कुछ नया नहीं कर पाते, आप वही पुरानी चीजों पर खुद को ढाले रखते हैं। तो लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एक चेंज हम भी एक्सेप्ट करते हैं, एक अगला गाना प्ले करते हैं आपके लिए। एंजॉय कीजिए हमारे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एम पर।

ये था इट हैपेंस पर सताक्षी का आज आपके साथ एक और साथ, और आई होप कि आपने भी आज इस साथ को बहुत पसंद किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। कुछ बहुत ही खूबसूरत दुआते हैं, बहुत ही खूबसूरत जज्बात हैं, गाने हैं जिन्हें आपके साथ कल फिर से इसी शो इट हैपेंस में बांटूंगी, शेयर करूंगी। लेकिन अब इस सफर से इजाजत लेने का, विदा लेने का वक्त है, तो चलिए कल मिलते हैं एक बार फिर से इट हैपेंस में, और आज के सफर से लेते हैं इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिना उससे बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम हैगा मसान, नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म। वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्ढा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबा ते मुक्ति दी खोज, ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्ढा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: पे हाँ हीरो की
1: मेरा
0: तरह।
1: नाम डॉक्टर कुमार और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
5: Hey, secret.
6: Hey, Sean. Oh, mere rahan di makama nal pak thak sahaj subah nu

हाँ जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम हैगा इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सिज अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नूं करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस दिंदी आ, उह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच है ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: तो बोला मुँह।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Farmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
4: Ke alam mein nasha ho jab tere rukhsar dekhun, khuda ne jab tarasha hoga wo asrar dekhun, nigahon mein basa hai is qadar ye noor tera, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: करना चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: घर इस

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

बाकी से जो पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर ते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट,
3: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय।
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आप सब सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। अगेन सबसे पहला क्वेश्चन आप सब से कि आप कैसा फील कर रहे हैं आज। दोस्तों थर्सडे आ गया है तो आपकी फीलिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे जो है वो अच्छी होनी शुरू हो गई होंगी। मतलब वो हार्ड फीलिंग्स जो वीक की स्टार्टिंग के लिए होती है, हफ्ते की शुरुआत के लिए होती है, वो तो अब नहीं होंगी, राइट? क्योंकि धीरे धीरे हम जा रहे हैं उसी और जो आपको बहुत पसंद है। आपको क्या, पूरी दुनिया में हर कॉर्पोरेट मजदूर को वो पसंद है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के साथ, और वो है हेल्दी रिचुअल। जी हाँ, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ। हेल्दी रखती है हमें फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आइए करते हैं और फिर सीधा जाते हैं प्रोग्राम के एक बढ़िया से गाने की तरफ, जिससे शुरुआत होगी इन द ऑल रियल सेंस। जी हाँ, तो सबसे पहले आइए करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज।

क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते अब शुरुआत होने वाली है प्रोग्राम की। प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होगी? वेल ऑफ कोर्स एक बढ़िया से गाने के साथ। जी हाँ, और बढ़िया सा गाना कौन सा होने वाला है? वेल वो है नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए में उदे नाल नहीं जाना। जी हाँ, आई मीन कितने प्यारे प्यारे गाने हैं, राइट? सुनते हैं इस गाने को और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

उसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। अब जरा जान लेते हैं क्या कह रहा है मौसम, क्या कह रहा है टेम्परेचर। जी हाँ, सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा रहने वाला था, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो 24.2 डिग्री सेल्सियस के करीब है और फील आपको हो रहा है 21.3 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, दिन की बात हो गई, रात की बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के रहने के चांसेस हैं। जी हाँ, और नो चांसेस ऑफ बारिश, जैसे मैंने कहा था कि बारिश के चांसेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत क्लाउडी सिचुएशन अभी मुझे दिख रही है बीच बीच में, बाकी सब बढ़िया है, एयर क्वालिटी भी है एकदम फेयर। जी हाँ, ये तो हुई आज की बात। अब कल की बात की जाए, मतलब कल भी जो है वो मौसम सनी सनी रहने वाला है पूरी तरह से, विद 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर और बारिश के चांसेस 10% जो कि ना के बराबर है। वहीं अगर सैटरडे की बात की जाए तो तापमान एकदम बढ़ जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और आप लोगों को लगेगा ओ सितंबर में फिर से इतनी गर्मी पड़ रही है यार। या दैट्स हाउ यू गोना फील ऑन सैटरडे, बिकॉज 32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे दिख रहा है, सूरज चमचमाता हुआ दिख रहा है, नो चांसेस ऑफ बारिश और इनफैक्ट बादल भी नजर नहीं आ रहे। ऑलमोस्ट संडे को भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है हाल। सो या ये है कुछ मौसम का हाल आज का और अगले दो दिन का। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा गाना आपको सुनाते हैं और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज शनिवार के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो अब आपकी फरमाइशों की शुरुआत हो जाए तो बात बन जाए, और उससे मेरा मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं। और इन केस आप नहीं सुन पा रहे हैं तो मतलब आप हमारे प्रोग्राम को पहली बार सुन रहे हैं, तो हम आपको बताने के लिए तैयार है कि हम आपको क्या सुनेंगे। अब तो मैं बातें करना बंद करो, सीधी सीधी बात करो। चलिए ठीक है, सीधी सीधी बात करते हैं। सो बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम में आप अपने फेवरेट गाने हमसे प्ले करवा सकते हो, फरमाइश कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो, और तो और डेडिकेट कर What you gonna do? आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे अजूबे हैं, लेकिन उन अजूबों में आधे से ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं। और वो छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी सारी की सारी गलतियां माफ होती हैं। जी हाँ, सो ऐसा ही कुछ हुआ जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है किस्सा। और वो किस्सा है एक बच्चे का जो कि 9 साल का है और वो माइनक्राफ्ट खेलता है। और यहां पर वो माइनक्राफ्ट खेलता रहता था तो उसके पापा ने उसे कहा कि अच्छा, अगर तुम माइनक्राफ्ट इतना अच्छा खेलते हो, तुम्हें इतना पसंद है, तो व्हाई डोंट यू मेक अ चैनल। जी हाँ, अब एक चैनल बना लो यूट्यूब पे और लोगों को सिखाओ माइनक्राफ्ट कैसे खेलते हैं। जी हाँ, बस फिर क्या था, बच्चे ने यूट्यूब चैनल बना लिया और ऑफ कोर्स डैड ने उसकी हेल्प की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, प्रमोट भी कर लेते हैं इस चैनल को थोड़ा सा। एक $200 का प्रमोशन जो है वो करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा प्रमोट कर लेते हैं चैनल को। लेकिन लिटिल डिड दे नो कि उन्होंने $200 के बजाय $118,000 का प्रमोशन रन कर दिया है। और ये किया गया है उसके पिताजी के वर्क क्रेडिट कार्ड से। जी हाँ, आपने सही सुना। तो एक बच्चे ने अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए अपने पिताजी का वर्क क्रेडिट कार्ड लिया और उससे वो प्रमोशन $200 से चेंज होके बन गई $118,000 की। जी हाँ, उसके पापा का तो सर चकरा गया होगा उसके बाद। और तो और, जहां पे वो काम करते हैं उनका भी सर चकरा गया होगा, बिकॉज इट्स अ वर्क क्रेडिट कार्ड। आई वंडर। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स जो पिताजी हैं उन्होंने कह दिया कि अब तो सब खत्म हो रहा है, ये चैनल खत्म हो रहा है, ये अब और कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बेटे ने कर दिया है धमाल और उस धमाल को मुझे संभालना है। और संभालना है मतलब रायता जो है वो समेटना है, और वो समेटेंगे कैसे मुझे नहीं पता। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी काफी बार हुआ है। एक बार एक छोटे से बच्चे ने अपनी मम्मी के फोन से इतने सारे मैकडी के बर्गर्स ऑर्डर कर दिए थे कि उनके घर में भरमार आ गई थी। जब लोगों को पता चला कि ओ, इतने सारे बर्गर एक ही घर से ऑर्डर हुए, और जब उस बच्चे की मम्मी ने देखा कि ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं, तो बच्चा उनको देख रहा था। एंड गेस व्हाट, वो तो टोडलर था, वो इतना छोटा था कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसे फोन चला रहा था, फोन चलाते चलाते उसने सीधा बर्गर्स ही ऑर्डर कर दिए। मतलब मैं ये कहूंगी कि वो थोड़ा तो शाना था। जी हाँ, क्योंकि खाने की चीज ऑर्डर करना इतनी छोटी उम्र में भी शाणी गिरी तो है, मतलब वो स्मार्टनेस है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

मेनस्ट्रीम शोज में से एक है एमिली इन पेरिस. नाउ इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल, जी हाँ, जिसका नाम एमिली है. वो अमेरिकन है और वो काम के सिलसिले में पेरिस जाती है. फिर उसके बाद पेरिस में जाने के बाद कैसे वो पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा अच्छा फील कर रही होती है, लेकिन पेरिस में जाने के बाद उसके नजरिया जो है वो बहुत चेंज हो जाता है. एमिली इन पेरिस इज फॉर फेमस फॉर इट्स फैशन. जी हाँ, ये जो कुट्योर आपको इसमें देखने को मिलता है उसके लिए फेमस है. एंड ऑफकोर्स वो जो अब्सर्ड डिसीजन जो कि एमिली लेती है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, उसके लिए फेमस है. जी हाँ, नाउ सिक्स्थ सीजन जो है वो फाइनल सीजन जो है वो आने वाला है नेटफ्लिक्स पर. और ये जो सीजन है वो 24th of December 2026 को आएगा. लेकिन वाया वी टॉक, सो इफ यू वांट टू वॉच इट यू कैन वॉच इट. इट्स अ लाइट हार्टेड शो, इट्स अ फन शो, एंड मिलेनियल्स के जो रिलेशनशिप्स है उनकी सच्चाई जो है वो बयान करता हुआ. आज हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जेडी वांस, जी हाँ, द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एमिली इन पेरिस. जी हाँ, उन्होंने तो साइड भी ले ली है कि एमिली को किसके साथ एंड अप होना चाहिए. यू नो हु ही इज, वेल आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट बिकॉज बात थोड़ी सी लंबी है और फनी भी है. बट पहले हम आपको एक गाना सुनाने वाले हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है.

किसी के साथ बात हो रही है एमिली इन पेरिस की, और एमिली इन पेरिस अब पेरिस के साथ साथ अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी घुस गया है। आप लोग बोलोगे कि है, पहले एग्जैक्टली पॉलिटिक्स में नहीं घुसा है, लेकिन वहां के वाइस प्रेसिडेंट इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में उनकी राय जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। जी हाँ, मैं आपको कहूंगी, मतलब उन्होंने पूरी तरह से, मुझे लगता है कि एमिली इन पेरिस देखा है और वो काफी फैन भी है, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि बस देखो अभी फाइनल सीजन आने वाला है और मैं तो इतना ही कहूंगा कि एमिली शुड एंड अप विद द शेफ। कौन है शेफ? जी हाँ, गेस कीजिए। अरे गेस तो कीजिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एमिली को गैब्रियल के साथ जो है एंड अप हो जाना चाहिए, और गैब्रियल वही है जिनके साथ शुरुआत ही हुई थी इस खूबसूरत रोमांटिक फलसफे की जब वो पेरिस आई थी। जी हाँ, उसके बाद ऑफकोर्स गैब्रियल से अलग हो गई वो, और गैब्रियल ने भी आगे उनके काफी सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो रहे, वो एक दूसरे जगहों पर प्यार जो है वो दोनों ढूंढते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फाइनल सीजन में वो सारे लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे और गैब्रियल के पास एमिली पहुंच जाएगी, क्योंकि जो फिफ्थ सीजन है वो वैसे ही खत्म हुआ है कि एमिली जो है वो कहती है, गैब्रियल जो है वो एमिली को बुलाते हैं और वो जो है वेनिस में उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं और एमिली वेनिस में मिलने जाती है। आपने नहीं देखा है शो तो टेक इट आउट, और मैं तो ये कह रही हूं कि अब आप देख ही डालिए, क्योंकि आप सोचिए कितने बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। एंड द फनी थिंग इज कि जेडी वांस का तो ये भी कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो ये तो शेक्सपियर को भी पीछे छोड़ देगा। जी हाँ, मतलब उन्होंने कहा इट इज एट द रिस्क ऑफ ओवरटेकिंग एट ओवरस्टेटिंग इट द शेक्सपियर ऑफ आर टाइम। जी हाँ, इट इज एट द रिस्क ऑफ ओवरस्टेटिंग इट द शेक्सपियर ऑफ आर टाइम। जी हाँ, उन्होंने कह दिया कि मतलब भाई ये तो शेक्सपियर को भी ओवरटेक कर सकता है इस हिसाब से तो। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कल्चरल जो है ये जो हमारी राय है वो चेंज हो गई है, उन्होंने कल्चरल क्रिटिसिज्म जो है भी किया है मिलेनियल्स को और जनरेशन को, कि आजकल लोगों को प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, प्यार खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन कि एमिली जो है वो अभी तक अपनी शादी नहीं कर पाई है। उन्होंने तो कह दिया कि देखो एमिली और गैब्रियल को जो है वो शादी कर लेनी चाहिए, उनको बच्चे करने भी शुरू कर देने चाहिए, उनको फैमिली स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप लोग बोलोगे कि हेलो जी, मतलब यहां पे इतनी सारी खतरनाक चीजें हो रही हैं और जेडी वांस उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एमिली इन पेरिस के बारे में बात कर रहे हैं। वेल, मैं तो आपको कहती हूं कि अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस है ना वो लिटरली किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे, अपने कारनामों कुकर्मों के बारे में बात नहीं करेंगे। लाइक इमेजिन पीपल आर टॉकिंग अबाउट एमिली इन पेरिस। नाउ आई एम नॉट सेइंग एमिली इन पेरिस इज अ बैड शो, इट्स अ गुड शो, बट द थिंग इज कि यहां पे इतनी सारी और चीजें बात करने के लिए। भाई तुम वो बताओ कि तुम ईरान के साथ लड़ाई कब खत्म करोगे, तुम ये बताओ कि गैस प्राइसेस कब कम होंगे, लेकिन तुम ये बता रहे हो कि एमिली और गैब्रियल की शादी होनी चाहिए, उनके बच्चे होने चाहिए। अरे वाह, तुम ही बन जाओ स्क्रिप्ट राइटर। जी हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग अपने काम को छोड़ के दूसरे काम क्यों करते हैं। चलिए ठीक है, ऑफ कोर्स बंदे को पसंद होगा एमिली इन पेरिस, दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट इट, बट द थिंग कि मतलब और भी तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत ही फनी चीज हुई है जो कि ऑफ कोर्स हमें जिसके बारे में बात करना है, और वो है क्या? वेल, वो है किम योंग जोंग। नाउ बात तो पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली खबरों की बात वो है फन साइड। किम जोंग युन वॉन्ट्स नॉर्थ कोरियंस टू हैव मोर स्टेट सैंक्शन फन। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब दैट इज सो फनी, राइट? मतलब किम जोंग युन जो है वो लोगों को, अपने लोगों को के लिए चाह रहा है कि वो लोग जो है वो स्टेट सैंक्शन फन जो है वो करें। आप लोग बोलोगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में? बेसिकली कहानी वहां से शुरू होती है जब नॉर्थ कोरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू एंजॉयिंग आर सेल्फ, और ऐसे में लोगों का जो पैसा है वो बैंकों में पड़ा हुआ, बहुत ज्यादा लोगों का जो पैसा है इतनी ज्यादा तादाद बैंकों में पड़ा हुआ है कि किम जोंग योन ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मतलब ऐसे तो बैंक्स भर जाएंगे और हमारी इकोनॉमी जो है उसमें इतना असर पड़ेगा नहीं, हमारी इकोनॉमी में ये इंजेक्ट होना चाहिए और लोग फंड करते नहीं है क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो वहां पर नॉर्थ कोरिया में अब नई नई चीजें खुल रही है, एंड व्हेन आई से नई नई चीजें मतलब जो सारी की सारी चीजें आपको दूसरी कंट्रीज में दिखती हैं लाइक वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, यू नो शॉपिंग मॉल्स और ये सारी की सारी अच्छी अच्छी चीजें जो आपको बाकी कंट्रीज में दिखती हैं वो नॉर्थ कोरिया में अभी तक नहीं थी। जी हाँ, मतलब थी बट उतने लेवल की नहीं थी। अब ऐसे में किम जोंग यून ने सोचा कि ऐसे तो नहीं बात बनेगी, लोगों के पास पैसा तो बहुत है और ये सारा का सारा पैसा बैंक में बैठा हुआ है, तो उसने कहा कि ठीक है ऐसा करो तुम सब फन करो। अब फन करने के लिए अगर ऐसे लोगों को कहेंगे तो वो फन थोड़ी करना शुरू कर देंगे। तो किम जोंग यून ने इसके लिए भी एक फतवा जारी कर दिया, उन्होंने कहा है कि यू नो व्हाट, हम आपको स्टेट सैंक्शन फन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम आपको कह रहे हैं कि तुमको फन करना पड़ेगा, तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तुमको करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे अजीब हिटलरगिरी है, मतलब कोई काम करना पड़ेगा ये तो समझा, तुमको फन करना पड़ेगा अगर तुम नहीं भी करना चाहते, ये तो पहली बार सुना है। जी हाँ, यो तो आपने पहली बार सुना है लेकिन यो हमने भी पहली बार सुना है क्योंकि ये किम जोंग यून ने कहा है। जी हाँ, सो जैसे मैंने कहा कि उनके जो पैसे हैं वो काफी सारी चीजों में जो है वो नहीं लगते थे, लेकिन अब जो है वो एंटरटेनमेंट और लेजर के लिए लोगों के पैसा जो है वो खर्चना चाहिए किम जोंग यून, इसलिए जो है वो लोगों को यू नो इंस्पायर कर रहे हैं। लग्जरी मॉल्स जो है वहां पर खुल रहे हैं, वाटर पार्क्स जो है वहां पर खुल रहे हैं, बीच रिजॉर्ट्स वहां पर खुल रहे हैं। जी हाँ, और कंट्री ने हैज सीन अ सर्ज इन इम्पोर्ट्स ऑफ ट्रेडमिल्स, मसाज इक्विपमेंट्स, पियानोज, अम्यूजमेंट राइड्स एज न्यू लेजर कॉम्प्लेक्सेस कंटिन्यू टू ओपन। जी हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बट द थिंग इज दैट इज सो फनी राइट, मतलब किम जोंग यून स्मार्ट तो बहुत है वैसे, मतलब ऑफकोर्स ही इज अ हिटलर बट फॉर अ हिटलर ही इज अ काइंड ऑफ स्मार्ट, मतलब उसने देखा कि बहुत पैसा है मेरे कंट्री के लोगों के पास जो कि बैंक में ही रह जाते हैं क्योंकि खर्चने के लिए जगह ही नहीं है, तो ऐसा करते हैं इनके खर्चने के लिए जगह बनाते हैं। जी हाँ, तो नई नई चीजें खुल रही हैं, फन चीजें खुल रही हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि तुम फन करो, और ऐसा नहीं है कि तुम उनको कहा जा रहा है कि फन करो, तुमको करना पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना है आप सबके लिए मेरी तरफ से।
6: तेरे खोलो

जुनू सु इंडिया ने एक और बहुत जबरदस्त कर दिखाई है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। जी हाँ, सो इंडियन डिफेंस टेक एक स्टार्टअप है जिन्होंने एक ऐसी शिप बनाई है, और आप उसे शिप भी नहीं कह सकते, वो काइंड ऑफ याच है, मतलब शिप जितनी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट शिप जितनी बड़ी है। जी हाँ, सो 1500 किलोमीटर का सफर ये तय किया इसने, और आप लोग बोलोगे कि ठीक है, मतलब एक शिप के लिए याच के लिए 1500 किलोमीटर का सफर करना कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम चीज है। वेल, बिना किसी इंसान के। जी हाँ, आपने सही सुना। सो इन्होंने एक ऐसा शिप बनाया है जिसमें उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से जो है उसे किया जा सकता है कंट्रोल, और ये 1500 किलोमीटर तक चली गई खुद ही। मतलब इसने जब भी इसको किसी कंट्रोल सर्वेलेंस से बचना था तो ये बच गई। जी हाँ, अगर इसे लग रहा था कि कहीं खतरा है, कोई ऐसे पायरेट्स वाले जहाज हैं, तो वहां से भी ये बच के निकल गई। जी हाँ, और ये सारे के सारे डिसीजन इसने खुद लिए, इसको किसी ने कुछ नहीं बोला। जी हाँ, ऑफकोर्स ये शिप जो है निकला और वहां से चलता गया और 1500 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया इसने, और ये चीज अमेरिका, चाइना या कोई और कंट्री अभी तक नहीं कर पाई। ऐसा शिप जो कि ऑटोनोमस चल रहा था, बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के चल रहा था, खुद अपने डिसीजंस ले रहा था, और ये शिप कितने अच्छे से कामयाब हो सकता है आगे जाके बहुत सारी चीजों में, कितनी बड़ी बात है, राइट? मतलब ये अचीवमेंट जो है वो हाईलाइट करती है द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ ऑटोनोमस नेविगेशन एंड रोबोटिक्स विद इन द नेशंस डिफेंस एंड मैरिटाइम सेक्टर। जी हाँ, और इस वेसल का नाम जो है वो है मतंगी। जी हाँ, और ये गाइड किया गया है इसे, ये गाइडेड इंटायरली बाय प्रोपेचरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन सिस्टम। जी हाँ, और ये अनमैन्ड शिप जो है वो सक्सेसफुली जो है वो 1500 किलोमीटर तक जो है वो घूम फिर के आ गया विदाउट अ कैप्टन, विदाउट अ क्रू ऑन बोर्ड। आप लोग बोलोगे कि हाँ, यही बात है। मतलब अब तुम लोग यहां से भी इंसानों की जॉब्स को रिप्लेस कर दो। शिप जो इंसान चलाते थे वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? वेल, मतलब थिंग इज की कितनी जबरदस्त सी बात है, और ये चीजों का हम यूज उस जगह पे कर सकते हैं जहां पे हमें लगे खतरा है, जहां पे किसी कंट्री को अपनी जो बॉर्डर्स हैं इन सी और समुद्र में, अपनी बॉर्डर्स जो है वो प्रोटेक्ट करनी है, वो चाहते हैं कि किसी इंसान को नुकसान ना हो, तो वो वहां पर ऐसे शिप्स को लगा सकते हैं। ये खुद डिसीजंस लेते हैं, खुद जो है वो सारे के सारे काम करते हैं, जहां पे जिस चीज से बचना है वहां पे बचते हैं, जहां पर जिस चीज के पास से निकलना है वहां पे उस चीज के पास से निकलते हैं। लाइक दे कैन लिटरली डू एनीथिंग। आई मीन kudos to this startup and kudos to India, because yeah, you did it। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
10: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
11: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
10: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
12: सांसों की माला पे सिमरूं मैं.
13: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज

0: on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: दोस्तों और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशी निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं खबरों की दुनिया की। जी हां, खबरों में बहुत कुछ चल रहा है। जी हां, बहुत कुछ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑफकोर्स ईरान और अमेरिका। ईरान ने अमेरिकी AI का ही इस्तेमाल कर अमेरिका पर किया हमला। जी हाँ, सो रिपोर्ट आई है कि ईरान ने अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अमेरिका पर हमला किया है। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने इसके लिए अमेरिका में विकसित AI का ही इस्तेमाल किया। ये रिपोर्ट एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने पिछले सप्ताह प्रकाशित की थी। एंथ्रोपिक ने समूह की पहचान नहीं बताई, लेकिन इसे खतरा पैदा करने वाला संगठन कहा है। कंपनी ने बताया कि समूह ने इंटरनेट से सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा कर अमेरिकी नौसेना की स्थिति का पता लगाने और संभावित लक्ष्यों के बारे में सुझाव देने के लिए क्लाउड आधारित AI का इस्तेमाल किया। एंथ्रोपिक ने बताया कि इस गतिविधि से जुड़े अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है और उसने इस खतरे को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार को इससे संबंधित जानकारी मुहैया कराई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस तरह की घटना अधिक आम हो सकती है क्योंकि अमेरिका के विरोधी सैन्य अभियानों को बढ़ावा देने के लिए AI का रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि एंथ्रोपिक के निष्कर्ष इस बात से मेल खाते हैं कि ईरान अपने रणनीतिक मकसद के लिए तकनीक का इस्तेमाल किस तरह करता रहा है, जिसमें अमेरिका और इजराइल के साथ उसका संघर्ष भी शामिल है। लेकिन यह सिर्फ ईरान ने नहीं किया है, क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो अमेरिका ने भी क्लॉड का इस्तेमाल किया था, मतलब एंथ्रोपिक के AI का इस्तेमाल करके उन्होंने ईरान पर हमला किया था। नाउ ईरान इज डूइंग द सेम। जी हाँ, ये टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है यहाँ पर। और ऐसे में अमेरिका क्या सोच रहा है इस बारे में, वेल ये तो मुझे जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एमिली इन पेरिस से अगर उनको फुर्सत मिलेगी तो वो डेफिनेटली सोच। पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका का ही एआई इस्तेमाल करके अमेरिका पर ही हमला जो है वो कर रहा है ईरान, वहीं शी जिनपिंग के संभावित अमेरिका दौरे से पहले ईरानी विदेश मंत्री अराग्ची ने चीन में क्या कहा। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चीन में कहा कि ईरान उन राजनयिक समाधानों का स्वागत करता है जो ईरानी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। अराग्ची ने अमेरिका पर इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन एमओयू का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बीबीसी फारसी के मुताबिक उन्होंने क्षेत्रीय देशों के साथ ईरान की बातचीत की शुरुआत का जिक्र किया और विदेशी ताकतों की मौजूदगी से मुक्त एक क्षेत्रीय व्यवस्था की स्थापना का आह्वान किया। ईरानी विदेश मंत्री की चीन यात्रा चीनी राष्ट्रपति की अमेरिका की संभावित यात्रा से पहली हुई है। बीजिंग में अराग्ची ने यह भी कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीते दो सालों में अब्बास अराग्ची की चीन की यह दूसरी यात्रा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लगभग एक सप्ताह में वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। हालांकि चीन ने अभी तक इस यात्रा की पुष्टि नहीं की है। दो दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ईरान बहुत जल्द समझौता चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आगे बढ़ने का अंतिम निर्णय उनका ही होगा। वेल, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा तो था, पर उसके बाद जो इनके हमले एक दूसरे पर चालू हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। सो राष्ट्रपति ट्रंप जो भी कहते हैं, आई थिंक हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान ने आरोप लगाया है भारतीय नौसेना की कार्रवाई उकसावे वाली है। जी हाँ, आखिरकार हुआ क्या है जरा आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने उकसावे वाली कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी राजदूत को तलब किया और मंगलवार को भारतीय नौसैनिक युद्धपोत के साथ टकराव पर विरोध दर्ज किया। जी हाँ, सो पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि इसके बाद दोनों पोतों के बीच संपर्क हुआ। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है और सैन्य अभ्यास, युद्ध विराम और सैनिकों की आवाजाही की पूर्व सूचना पर 1991 के द्विपक्षीय समझौते का पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि जब पाकिस्तान नौसेना अपना द्विवार्षिक सिपाक 26 अभ्यास कर रही थी, तब भारतीय पोत ने पाकिस्तानी नौसैनिक पोत के बेहद करीब आकर आक्रामक तरीके से युद्ध अभ्यास किया। लेकिन आपको पता है, इससे पहले इंडियन मीडिया ने ये कह दिया था कि वो, यानी कि इंडियन जो युद्धपोत है, वो अपनी जगह पर जा रहा था और एकदम से पाकिस्तानी युद्धपोत जो है वो उनकी तरफ जल्दी स्पीड से आता है और फिर उनके एकदम पास से होकर निकलता है। जी हाँ, सो यहां पर ये कह रहे हैं कि इसके पास से आके जो है वो इंडियन युद्धपोत जो है निकला और वहां पर जो है, यहां पर यानी कि इंडियन मीडिया के की अगर बात करें तो वहां पर ये कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी, सैटेलाइट वीडियोस जो हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि किसने क्या किया। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि प्रभारी राजदूत से कहा गया कि वो भारत सरकार तक ये संदेश पहुंचाए कि पाकिस्तान इस भारतीय कार्रवाई को कड़े शब्दों में खारिज करता है। भारतीय पक्ष से अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों, विशेष रूप से समुद्र में घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किए गए समझौतों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। किसने क्या किया, वी डोंट नो, लेकिन किसको क्या करने की आदत है, वी डेफिनेटली नो। नीड आई से मोर। जी हाँ, इसके साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
8: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
7: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
8: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
9: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध के बावजूद फेडरल रिजर्व ने लिया है कोई फैसला। जी हाँ, अमेरिका में 3 साल से अधिक समय में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। ये कवायद बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की कोशिश में की गई और इन्हें आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फेडरल रिजर्व ने सर्वसम्मत फैसले में ब्याज दरों को बढ़ाकर 3.75% से 4% के बीच कर दिया। पहले ये 3.5% से 3.75% के बीच था। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े विरोध के बावजूद लिया गया। ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती की मांग की थी। फेडरल रिजर्व के प्रमुख केविन वॉर्श ने कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और ये लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने इसे गंभीर और जिम्मेदारी भरा फैसला बताया। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ब्याज दरें 1% या उससे कम होनी चाहिए क्योंकि हम दुनिया में सबसे बेहतर, कोई मुकाबला नहीं। हाँ, ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज, होम लोन और क्रेडिट कार्ड लेना महंगा हो जाता है, हालांकि इससे बचत पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। बुधवार को फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ष ने कहा कि फेडरल रिजर्व के नेतृत्व के बीच आशावाद का माहौल है, लेकिन महंगाई अब भी एक समस्या बनी हुई है। अरे महंगाई की चिंता कहाँ है मिस्टर ट्रंप को, ट्रंप को तो और कुछ करना है। अच्छा चलिए एक और बड़ी जबरदस्त चीज आपको बताते हैं, और जबरदस्त इन अ बैड वे। अमेरिका ने कह दिया है कि उन्होंने अंतरिक्ष में भी यानी कि स्पेस में भी अपने हथियार पहुंचा दिए। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निविया पर जहां तक हमें पता है कि ऐसा कोई समझौता हुआ है जिसमें लिखा है कि कोई भी कंट्री स्पेस में अपने हथियार नहीं भेज सकती। वेल ऑफकोर्स अमेरिका ने ही वो समझौता जो है वो किया था बहुत सारी कंट्रीज के साथ, और यही सबको लग रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने कह दिया कि यू नो व्हाट, हमने अपने हथियार पहुंचा दिए हैं स्पेस में, अब हम स्पेस से भी हमला कर सकते हैं कहीं पर भी। जी हाँ, आप लोग बोलोगे बड़ी हिपोक्रेसी है यार, मतलब अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और, जो कहते हैं हम नहीं करेंगे तुमको नहीं करना है वो खुद ही कर देते हैं, कैसी कंट्री है ये। वेल कैसी कंट्री है ये तो हमें भी नहीं समझ आ रहा। सो हम इतना ही कहेंगे कि हाँ ये कर चुके हैं, लेकिन समझौते का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि समझौते में लिखा गया था कि कोई भी न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर जैसा हथियार जो है वो स्पेस में नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि कोई भी हथियार नहीं पहुंचाया जाएगा। सो हमने कर दिया है, अब हम स्पेस से भी सब पे नजर रखेंगे और स्पेस से भी हमला करेंगे। सो आप सब बच के रहो। जी हाँ, ये अमेरिका कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, मेरे हिसाब से तो आपको जो करना है आप कीजिए, क्योंकि अरे एक जिंदगी है, अब अमेरिका से डर के थोड़ी रहेंगे। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

तो कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरी आंखों के सामने एक मीम आता है और वो इतना फनी था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिसनर्स कहाँ हैं, कब प्रोग्राम शुरू होगा, मैं कब जाऊंगी। जी हाँ, तो ऑफकोर्स आज प्रोग्राम आ गया है, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये मीम आप तक पहुंचाने का वक्त हो गया है। तो वहां लिखा हुआ था कि इट इज माई फर्स्ट टाइम इन कोर्ट एंड आई हर्ड द जज सेइंग ऑर्डर एंड आई क्विकली रिप्लाइड फ्राइड राइस विद चिकन। Now two policemen are escorting me outside. I think we are going to the restaurant. अगर आपने नहीं सुना है, मैं आपको फिर से सुनाती हूँ। It is my first time in court and I heard the judge saying order. And I quickly replied, fried rice with chicken. Now two policemen are escorting me outside. I think we are going to the restaurant. जी हाँ, yeah, you are going to the restaurant. Don't worry. आपने बहुत ही अच्छा order किया है। जी हाँ, मतलब बात तो सही है। अब किसने बनाया, ऑर्डर का मतलब होता है कि खाना ऑर्डर करो, है ना। सो ऐसे में किसने बनाया कि कोर्ट में जज बोलेगा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। भाई ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर का मतलब तो यही है कि खाने को क्या ऑर्डर चाहिए, मतलब है ना। किसी को भी गलत फहमी हो सकती है, जो पहली बार कोर्ट जा रहा है, जिसने नहीं देखा कोई कोर्ट ट्रायल, वो तो ऐसा समझ सकता है कि ये तो हमें कुछ खाने को ऑर्डर करने के लिए बोल रहे हैं, तो कर दिया बंदे ने ऑर्डर। अब जब बंदे ने कर दिया ऑर्डर, तो दो पुलिसमैन आए और उसको लेकर जा रहे हैं। बेचारे को अभी भी नहीं पता कि उसको जेल में डालने के लिए लेकर जा रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो रेस्टोरेंट जा रहा है। जी हाँ, एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, अगेन जबरदस्त है ये गाना।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलनगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार शेनीबिया के साथ। दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, एंड गेस व्हाट, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट जिसमें हम आपको पुराने गाने सुनाते हैं, पुराने किस्से सुनाते हैं और बहुत सारे खूबसूरत सा माहौल भी आपके लिए क्रिएट। लेकिन जो शुरुआत हो रही है इस सेगमेंट की, वो हो रही है एक फरमाइशी गीत पे, और इसकी फरमाइश हमें काफी देर पहले ही आ गई थी, लेकिन हम इसे अभी प्ले कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये अभी के लिए एकदम परफेक्ट है। जी हाँ, सो ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है खामोश लव है झुकी है पलके, क्या बात है। बेसिकली ये गजल है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सॉन्ग, बट द थिंग इज की क्या म्यूजिकल पीस है। एंड थैंक यू सो मच अमला जी हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए, ये वाइब क्रिएट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में, बिकॉज हमारे प्रोग्राम का नाम ही इवनिंग वाइब है, सो वाइब तो बनती है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

और जिस मैंने कहा था कि प्रोग्राम का जो ये सेगमेंट है ओल्ड इज गोल्ड, ये बहुत ही ज्यादा खास है और यहाँ पर शुरुआत भी हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत गानों के साथ. नाउ लेट्स जस्ट गो आगे की ओर और आप लोग बोलोगे कि हाँ आगे की ओर बढ़ने का ही वक्त है, इसमें आगे की ओर बोलने की क्या जरूरत है. वेल, वो इसलिए क्योंकि अब हम गजलों से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं और दूसरे खूबसूरत गानों के करीब आ रहे हैं. जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि गजलों से दूर जा रहे हैं खूबसूरत गानों के, और भी बहुत ही प्यारी प्यारी गाने हम आपको सुनाने वाले हैं. सो एक गाना है जिसका नाम है आओ हुजूर तुमको. जी हाँ, आओ हुजूर तुमको. और आपको बताइए ये कौन सा गाना है. इसमें बहुत ही खूबसूरत अभिनय करती हुई करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर की मदर आपको नजर आई है. बबीता का ये गाना है. लेकिन यू नो व्हाट, एक चीज है जो मुझे बहुत ही ज्यादा खास लगी थी उस गाने में. सो जो ये गाना है वो किस्मत मूवी का गाना है और इसमें बबीता जो है वो ड्रंक एक महिला है, उसका किरदार निभा रही है. बेसिकली उस गाने में, उस सिचुएशन में वो ड्रंक है और वो ड्रंक होकर इस गाने को जो है वो गाती हुई नजर आ रही है. लेकिन जब आप उनकी एक्टिंग को देखोगे ना, मतलब आपको सच में ऐसा लगेगा कि क्या क्या एक्टिंग की है. लेकिन क्या आपने आशा जी की उस गायकी को सुना, मतलब ऑफ कोर्स लिप सिंकिंग जो है वो एकदम एप्ट है उसमें. लेकिन एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मतलब बबीता को जैसा एक्टिंग करना था वैसा ही गाना गाया आशा जी ने. और इसीलिए व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सिबिलिटी जो कि लेडीज में मानी जाती थी, तो उसे पूरा करते हुए आशा जी ही नजर आती थी. और ये बात तो लता जी ने खुद भी कही है कि आशा जैसे गाने तुम गाती हो ना वो मैं नहीं गा सकती. जी हाँ, उनकी बहन लता मंगेशकर ने ये बात कही है. अब यहां पर बबीता जो है वो पूरे एटीट्यूड में है क्योंकि ऑफ कोर्स वो सिचुएशन वैसी है. आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू. अगर आपने नहीं देखी है किस्मत मूवी तो जरूर देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी. लेकिन यहां पर बबीता जो है वो ड्रंक किरदार में नजर आ रही है, लेकिन जहां जहां वो पोज ले रही है, जहां जहां वो हिचकी ले रही है, वैसी वैसी सारी की सारी चीजें आशा जी ने की है. अब एक सिंगर जब गाता था तो वो अपने सामने उस एक्टर को बिठाता था और जहां जहां पर वो वैसी एक्टिंग करता था वैसे ही तरीके से गाते थे वो सिंगर. जी हाँ, और ये पहली बार नहीं जब मैं इसके बारे में बात कर रही हूं, क्योंकि ये चीज रफी साहब किया करते थे. रफी साहब जब भी गाना गाते थे तो उस गाने को स्क्रीन पे कौन प्ले करने वाला है उस एक्टर को सामने बिठाते थे. अब जैसे शमी कपूर का गाना रफी साहब गाते थे तो शमी कपूर की एक्टिंग को देखते थे वो. उन शीशा लगा होता था, शमी कपूर बाहर बैठे होते थे और रफी साहब अंदर बैठे होते थे. रफी साहब देखते थे कि ओह ये गाना जो है यहां पर आ रहा हो तो कहां पर अपनी गर्दन को जो है वो हिला रहे हैं शमी कपूर, कहां जो है वो झटका ले रहे. या ये सारी की सारी चीजें ही इन गानों को इतना मजेदार बनाती थी. आजकल वो लिप सिंकिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि आजकल वैसा होता ही नहीं है. गाने कोई और गा देता है, एक्टिंग में कुछ और हो जाता है और लिप सिंकिंग तो होती भी नहीं आज से ज्यादा गानों में. एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन. यू नो व्हाट, अपनी बहुत टाइम तक, मतलब मैं जब छोटी थी तो बहुत टाइम तक मुझे यही लगता था कि जो एक्टर है वही गाना गा रहे हैं. अब उसके पीछे रीजन यही था कि जो एक्टर होते थे वो इतने जबरदस्त तरीके से लिपसिंग करते थे, लेकिन जो सिंगर्स होते थे वो गाना भी तो उन एक्टर्स के हिसाब से उसी तरह से गाते थे. सो ये दोनों को ही इस चीज का क्रेडिट जो है वो जाता है. एंड दैट वाज द रीजन कि जब भी मैं पुरानी मूवीज देखती थी मुझे ऐसा लगता था अरे ये एक्टर ही गाना गा रहा है वो. तो मुझे बाद में पता चला कि ओ गाने कोई और गा रहा है, ये सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं. बट द लिप सिंकिंग वॉज सो परफेक्ट दैट यू वॉन्ट इवन फील कि इसे कोई और गा रहा है. जी हाँ, ये गाना आप सब के लिए आओ हुजूर तुमको.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर चेनीविया के साथ. दोस्तों, अब बात हो रही थी एक ऐसे गाने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आओ हुजूर तुमको, जो आपने गाना भी सुना कैसे उसमें ड्रंक जो है वो बबीता गाना गाती है, लेकिन उस गाने को आशा जी ने रियल में गाया है. बबीता जी ने सिर्फ लिप सिंक किया है, लेकिन कैसे नशे में ना होकर भी नशे में उन्होंने पूरी तरह से उस गाने को गाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था. लेकिन ये सिर्फ यहां नहीं हुआ है. जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा रफी साहब के साथ भी हो चुका है. अब एक गाना है उनका जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, एंड गेस व्हाट, वो गाना सबसे पहले हमें रिकमेंड किया था किसी ने. जी हाँ, बहुत ही खास शख्सियत है हमारे बॉस मिस्टर जतीश पूरन जी, उन्होंने इस गाने को रिकमेंड किया था पहली बार इस प्रोग्राम में. उससे पहले मैंने इस गाने को

सुना भी नहीं था, एंड जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना, आई वाज लाइक वाओ वाओ क्या गाना है। जी हाँ, गाने का नाम था छू लेने दो नाजुक होंठों को। जी हाँ, डोंट वरी, मैं गाऊंगी नहीं। अब ये गाना जो है जितना खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही फिल्मी है। अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको पता होगा कि इस गाने में सिर्फ और सिर्फ दो ही अंतरे हैं, मतलब दो ही शेयर हैं। अब इस गाने को लिखा बेसिकली साहिर लुधियानवी ने है, लेकिन यहाँ पर राम महेश्वरी जो कि इसके डायरेक्टर थे, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दो शेयर यानी कि दो अंतरे चाहते थे, वो भी सीन के बीच में। और इसके लिए उन्होंने साहिर लुधियानवी को कहा। साहिर लुधियानवी ने दो अंतरे यानी कि दो शेयर उनको लिख कर दे भी दिए, लेकिन जब उन्होंने शेयर पढ़े, यानी कि उन्होंने नहीं, डायरेक्टर ने नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर जो कि रवि थे, जब उन्होंने शेयर पढ़े तो उनके दिमाग में खूबसूरत धुन आई। जब उन्होंने वो धुन बजाई और वो साथ में लिरिक्स का उन्होंने गाने की कोशिश की, तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं नहीं नहीं, ये बस यहां खत्म नहीं होना चाहिए, इसको तो पूरा फुल फ्लेश्ड गाना होना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने डायरेक्टर राम महेश्वरी को कहा कि नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, अगर हम इसे गाना नहीं बना पाए ना तो बड़ी ही गड़बड़ हो जाएगी, हमें इसे गाना जरूर बनाना चाहिए, आप धुन सुनिए, ये शेयर सुनिए, क्या जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर क्या था, डायरेक्टर राम महेश्वरी मान गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, बट ये दो अंतरों से ज्यादा यानी कि दो शेयरों से ज्यादा एक भी लाइन नहीं होनी चाहिए। बस फिर क्या है, रफी साहब को बुलाया गया और रफी साहब ने इस गाने को जब गाया तो लोग लिटरली क्रेजी हो गए। अब फन फैक्ट ये है कि रफी साहब ने इससे पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, मतलब कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जो भी गाना है इस, मतलब जो भी इंसान इस गाने को सुनता है, उन पर एक नशा जा जाता है। और वही नशीली आवाज, जिस नशीली आवाज से रफी साहब ने गाया है इसे, वही नशा लोगों में छा जाता है। रफी साहब ने इसे गाया, लोगों ने इस गाने को सुना, बट लोगों को सिर्फ एक ही बात की शिकायत थी कि ये गाना लंबा क्यों नहीं है। जी हाँ, फिर क्या था, डायरेक्टर महेश्वरी जो है वो गए, साहिर लुधियानवी को ढूंढा गया तीसरे अंतरे के लिए कि और अंतरे उनसे लिखवाए जाए, लेकिन तब तक साहिर लुधियानवी उन्हें मिले ही नहीं, वो कहीं जा चुके थे। बस ये दो अंतरों में ही गाना सिमट के रह गया, और यही वजह थी कि इस गाने को बनना भी नहीं था, लेकिन ये बना। और जब बना तो इसको आगे एक्सटेंड करने की कोशिश की गई, बट इतना ही इस गाने को रहना था, वो किस्मत थी इसकी, सो इसीलिए साहिर लुधियानवी उन लोगों को मिले ही नहीं। जी हाँ, सो ये गाना खूबसूरत सा आप सबके लिए, अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट परफेक्ट सॉन्ग जो कि रफी साहब ने गाया है।

दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, घड़ी का इशारा आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल, और कल है फ्राइडे। ओले ओले, ओहो ओहो ओहो ओहो। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या ओहो ओहो, अरे मस्ती मस्ती सूझ रही है मुझे, क्योंकि कल है फ्राइडे और फ्राइडे का मतलब है मस्ती। फ्राइडे इज स्टार्ट्स फ्रॉम एफ, बट मस्ती स्टार्ट्स फ्रॉम एम, बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फ्राइडे मीन्स मस्ती। That's it. इसी के साथ मिलना होगा कल। आप क्या करने वाले हैं? Well, of course, जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, धीरे धीरे मचल।

0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं अदावत पे जाने।
1: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। गाओ।
0: मुझे बहुत दुख होता है, सुने मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं।
0: मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
1: कहां से सीखी?
0: सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से।

से जो पर सो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: कुछ बातें कहे जाने के लिए नहीं होती, वो गाई जाती हैं। और जब वो गाई जाती हैं, तो कव्वाली बन जाती हैं।

ना बदला में, ना बदला।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निविया शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में चोरियों के आरोपी पर दर्ज हुए 36 मामले। ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचाने वाले 24 साल के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर ब्रिस्बेन, लॉगन और गोल्ड कोस्ट के कई घरों में चोरी और गाड़ियों के गलत इस्तेमाल के कुल 36 केस दर्ज किए गए हैं। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। वहीं सिटी हॉल में डेमोक्रेसी टूर की शुरुआत। ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक सिटी हॉल ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यहां डेमोक्रेसी टूर का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग क्वींसलैंड की राजनीति, यात्रा और लोकतांत्रिक इतिहास को करीब से जान सकेंगे। वहीं स्कूल की छुट्टियों के दौरान यंग वर्कर्स की सुरक्षा के सख्त नियम। आगामी स्कूल की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिस्बेन प्रशासन ने लोकल बिजनेस और दुकानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। पार्ट टाइम काम करने वाले युवा छात्रों की सुरक्षा, सही वर्क आवर्स और काम के माहौल को लेकर निरीक्षण तेज कर दिया गया है। वहीं फुटपाथ ट्रेडिंग के लिए नई आसान पॉलिसी मंजूर। ब्रिस्बेन और बिसाइड के स्थानीय दुकानदारों और कैफे मालिकों के लिए राहत की खबर है। काउंसिल ने फुटपाथ ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव करते हुए नई पॉलिसी अपनाई है। वहीं आर्थर सीट पर रेस्क्यू टीमों की संयुक्त मार्क ड्रिल। जी हां, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आर्थर सीट इलाके में इंटर एजेंसी रेस्क्यू क्रू ने एक बड़ा संयुक्त अभ्यास किया। इसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों ने पहाड़ी और मुश्किल रास्तों से लोगों को सुरक्षित निकालने की कला का अभ्यास किया। वहीं बर्नेट स्ट्रीट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट का काम पूरा। ब्रिस्बेन के बर्नेट स्ट्रीट इलाके में सड़कों को सुरक्षित बनाने और ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए शुरू किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले सेमिकॉन इंडिया 2026 का भव्य आगाज। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शानदार आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 52 से ज्यादा देशों की 600 से अधिक टेक कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं भारतीय नौसेना और पाकिस्तान के जहाज में मुठभेड़। अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय पानी में भारतीय नौसेना के जहाज और पाकिस्तान की नेवल बोट के टकराने की खबर सामने आई है। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को समन जारी कर उनके इस वर्ताव को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। वहीं अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों का दबदबा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतरीन खबर आई है। अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 21% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। अगस्त महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 8.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं दृष्टिहीनों के लिए बना नया वॉइस एनेबल्ड ब्रेल प्रिंटर। जी हाँ, तकनीक के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की इंजीनियरिंग छात्रा हिमाजा लिंगपल्ली ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने एक वायरस इनेबल्ड ब्रेल प्रिंटर का आविष्कार किया है, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित जेम्स डायसन अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। वहीं स्टेम सेल थेरेपी को लेकर केंद्र सरकार की चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और क्लिनिक्स को सख्त निर्देश जारी किया है। बिना वैज्ञानिक प्रमाण के चलाए जा रहे स्टेम सेल इलाज और फर्जी दावों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले मक्का के पास ड्रोन हमला नाकाम। सऊदी अरब ने मक्का शहर के पास सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ड्रोन हमला समय रहते नाकाम कर दिया है। यमन के हूती विद्रोही गुटों ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वहीं अमेरिका में पास हुआ नया टैरिफ बिल। अमेरिकी संसद में रूस प्रतिबंध बिल पास कर दिया गया है। इसके तहत रूस से तेल या ईंधन खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून का सीधा असर कई एशियाई और यूरोपीय देशों के व्यापार पर पड़ सकता है। वहीं सूडान की सोने की खान में बड़ा हादसा। पश्चिम कोडोफान प्रांत के से एक बेहद दुखद खबर आ रही है। वहां एक सोने की खदान ढहने से कम 60 खदान कर्मियों की मौत हो गई है। इसके साथ सिंगापुर में किताबें पढ़ने पर मिलेंगे पैसे। डिजिटल दौर में लोगों को दोबारा किताबों से जोड़ने के लिए सिंगापुर सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। नए 5 साल के प्रोग्राम के तहत रोजाना किताब पढ़ने वाले नागरिकों को आर्थिक इनाम और रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। वहीं ब्रह्मांड में खोजा गया सबसे युवा ग्रह, जी हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान में एक कड़ी बड़ी कामयाबी मिली है। नासा के डेटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे छोटे और युवा ग्रह की खोज की है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह की उम्र 10 लाख साल से भी कम है, जो खगोल शास्त्र के लिए बेहद अहम खोज मानी जा रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 टीम, जी हाँ, क्रिकेट फैंस ध्यान दें, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं मेसी को अर्जेंटीना टीम से मिला विदाई मैच का न्योता। फुटबॉल दिग्गज लियोनल मेसी के फैंस के लिए अच्छी खबर है। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने मेसी को 6 अक्टूबर को होने वाले एक फ्रेंडली मैच में खेलने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं चेस ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम की शानदार शुरुआत। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे 46th विश्व चेस ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम ने दमदार आगाज किया है। पहले ही मैच में भारत ने डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ को 4-0 से एक तरफा मात दे दी। कुनेरू, हम्पी और वैशाली ने अपने अपने मैच आसानी से जीत लिए। वहीं नोवाक जोकोविच की चाइना ओपन में वापसी। टेनिस के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पूरे 11 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर चाइना ओपन में खेलते नजर आएंगे। जोकोविच ने खुद इसकी पुष्टि की है, जिससे टेनिस प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भारत ब्राजील के लेजेंड्स के बीच होगा धमाकेदार मैच। फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक और बड़ा नजराना, कोची के मैदान में भारत और ब्राजील के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मैच खेला जाएगा। इसमें रोनाल्डिनो और रिवाल्डो जैसे विश्व प्रसिद्ध सितारे एक बार फिर मैदान पर अपना जलवा बिखेरते दिखेंगे। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वान।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट कर करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल. ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाले हम तेजी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे, फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज गायवान की डेब्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से थी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: पे हाँ हीरो की तरह।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी देख पर फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिड़ा नाम है इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस दिंदी आ, ओह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: कामू?
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Ke alam mein nasha ho jab tere rukhsar dekhu, khuda ne jab tarasha hoga wo asrar dekhu, nigahon mein basa hai is qadar ye noor tera, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट
3: करें।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi,

प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाच के मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं, हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं, सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो, सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता की ये बात जिंदगी के हर मोड़ पर, हर परेशानी में हमारे लिए बहुत जरूरी और कारगर है। अगर हम इसे याद रखें तो शायद हम जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस बड़े ही आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से जिंदगी के ऐसे ही पन्नों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, जीवन आधार में उस परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर, उस वाहेगुरु अल्लाह और जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़कर उनकी कही कई बातों पर जरा ध्यान देके गौर करके अपने जीवन को एक आधार देते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सताक्षी आपके साथ जीवन आधार में और लेकर आई हूं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर यही सफर। आज एक नई सुबह, एक प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी से भरी सुबह आपके लिए फिर से। आइए इसे एक अगले गाने के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए मेरे साथ जीवन आधार।

कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट हरी हैं दुनिया देखे नाही, ऐसे घटघट हरी हैं दुनिया देखे नाही। रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं जीवन आधार सताक्षी के साथ। हम उस शक्ति को जो इस दुनिया को चला रही है, जिसे हमारी खुशी हमारे गम हर चीज का ख्याल है, या जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आती है, उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। मंदिर में, चर्च में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, हर जगह जाके हम उस शक्ति को खोजने की, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमें उसकी कृपा मिल सके, हम उसे प्राप्त कर सकें। लेकिन देखा जाए तो आपके अंदर ही तो वो शक्ति है, आपके अंदर ही वो राम है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर ही वो अल्लाह है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अपने मन के अंदर झांकिए। मन के अंदर कैसे झांकेंगे? ऐसे नहीं झांकेंगे, मन के अंदर तब झांकेंगे जब अपने मन को समझ पाएंगे। एक बार मन को समझ गए तो ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा आपको हर जगह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आइए इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे, हमारे जीवन आधार के सफर में सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर जीवन का आधार, जीवन आधार श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। आज अपने जीवन को आधार देने की, उसे समझने की, जानने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे।

हम मनुष्य भी कितने अजीब हैं ना, मतलब दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख के दिन होते हैं, जब सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा होता है, बेहतरीन चल रहा होता है, तो अक्सर रातें हमारी सोकर बीतती हैं, दिन खाकर गुजर जाते हैं। हर एक चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, हम दुनिया की सबसे कीमती या बेशकीमती चीजें पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारी चीजें हमारे साथ हों, हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो सुख सुविधा से जुड़ा जो हमारे पास ना हो, है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं, सांसारिक कीमती चीजों को पाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर से बढ़कर, उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु से बढ़कर भला हमारे जीवन में कीमती और क्या हो सकता है। आपको जो मिलता है वो भी उसकी मर्जी, और जो नहीं मिला वो भी उसी की मर्जी। इसी बात पर ही अगला गाना सुनिए। इसे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप हैं सताक्षी के साथ।

कहानी 1701 एम्पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि मन हमेशा सही होता है, मन हमेशा सच बोलता है और इसीलिए जो मन कहे वही करना चाहिए। लेकिन यही मन है दोस्तों जो लालची है, जो सब कुछ खुद के लिए पाना चाहता है, सब कुछ खुद के लिए करना चाहता है। यही मन है जो चंचल है और चोर भी है, हर तरफ भागता है, आज यहाँ तो कल अपने फ्यूचर की जाने कितने ज्यादा दिनों के फ्यूचर की प्लानिंग कर डालता है। मन आपका आज में रहता ही कहाँ है, वो तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। हाँ, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन आपका मन पहुंच जाता है। लेकिन इस मन के हिसाब से मत चलिए। माना कि ये मन हर जगह पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी इस मन के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि ये मन ही है जो हर पल बदलता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। कहते हैं ना, अभी आप कुछ सोच रहे थे, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। हमारा मन हमेशा अपने रास्ते खुद बना लेता है। मन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मन को चलाइए, क्योंकि अगर एक बार आपका मन आपको कंट्रोल करने लगा तो परेशानी बहुत बहुत हो जाएगी। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और रहिए

आधार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो पुलिसवानी 1701 एम पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परम पिता को, इसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

हिंदुस्तानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी बहुत बड़ी चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी हो ताकि हम जिंदगी के हर एक पल का मजा ले सकें और ज्यादा दिन जी सकें, ज्यादा दिन अपनी जिंदगी को इंजॉय कर सकें। फिर तो पता नहीं ये जिंदगी कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादा जियेंगे तो ज्यादा इस जिंदगी को संवार पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जिंदगी एक दिन की है, चार दिन की है या फिर सालों की है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे जीते कितना है। बहुत सारे लोग तो बुजुर्ग भी हो जाते हैं लेकिन जिंदगी उन्होंने जी ही नहीं होती है। कम से कम वैसे मत बनिए। जिंदगी चाहे एक दिन की ही क्यों ना हो, लेकिन इसे इस अंदाज में गुजारिए कि ये दुनिया का एक सबसे खूबसूरत और प्यारा पल रहे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आप अपनी जिंदगी का हर पल मुस्कुराते हुए बिता पाएं और औरों को मोटिवेशन दे पाएं। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी, आपके साथ है सताक्षी।

दोस्तों ये था आज एक बार फिर से जीवन आधार पर मेरा आपके साथ एक और साथ। कल फिर से एक ऐसे ही साथ पर हम और आप साथ साथ चलेंगे। कल हमें सुनना मत भूलिएगा और आज के सफर से आप लूंगी इजाजत।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे ईशानी जैन। फ्राइडे आ गया है दोस्तों, मतलब वीकेंड का जो काउंट डाउन है वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। आज सुबह एक सिंपल सी बात जरूर याद रखिएगा कि हर मॉर्निंग एक न्यू शुरुआत बिगनिंग लेकर आती है। कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या मिस हुआ, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में जरूर रखिएगा। आज का दिन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो दिन सिर्फ और सिर्फ आपका है। स्माइल कीजिए, चाय या कॉफी का फर्स्ट सिप लीजिए और वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगले एक घंटे तक आपके दोस्त यानी आरजे जानी जैन आपकी फ्रेंड जो है वो मॉर्निंग शो को बनाएंगे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा एंटरटेनिंग और बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्स हम इंक्लूड जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमें देखने को, सुनने को और समझने को मिलेगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक, यानी कि शुरुआत करते हैं इस ट्रैक से अपने इस कार्यक्रम को ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में भी आप सभी ने सुना है ये गीत और आशा करते हुए ये गीत सुनकर आपको जरूर एनर्जी मिली होगी, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में एनर्जेटिक चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो हम खुद भी एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आपको ये गाना सुनाने का यही तात्पर्य था कि हम एनर्जी फील करें, पॉजिटिव वाइब्स हमारे पूरे चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स हमें महसूस हो। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट ट्रैक भी सुनते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, आज क्या न्यू अपडेट्स है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में क्या अपडेट्स है, जानेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

0: चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में क्या चल रहा है। 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट जो है वो सामने आई है। क्वींसलैंड का जो फिट्ज़रॉय रिवर है वहाँ पे रॉकहैम्पटन रोइंग और कैनो स्प्रिंट्स इवेंट्स के पोटेंशियल वेन्यू के तौर पर क्लियर हो गया है। इंडिपेंडेंट असेसमेंट के बाद वेन्यू को सुटेबल माना गया है। और हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस रिवर में क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं, तो ओलंपिक्स के एथलीट्स के लिए ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस डेफिनेटली मेमोरेबल होने वाला है। ब्रिस्बेन 2032 की प्रिपरेशंस की बात करें तो वो धीरे धीरे शेप ले रही है और आने वाले सालों में क्वींसलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर और इवेंट से जुड़ी और भी अपडेट्स देखने को मिलेगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।
1: क्या कहा?

अब थोड़ी बात करते हैं वेदर की। ब्रिस्बेन में थर्सडे इवनिंग टेम्परेचर जो है अराउंड 15 से 16 डिग्री सेल्सियस था और थर्सडे का मैक्सिमम अराउंड जो है 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रेनफॉल भी थर्सडे इवनिंग तक जीरो रिपोर्ट हुई थी। स्प्रिंग जो है वो ऑफिशियली आ चुका है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ सदर्न पार्ट्स में मॉर्निंग्स अभी भी काफ़ी चिली चल रही है। ब्रिस्बेन वालों मॉर्निंग वॉक या फिर ड्राइव के लिए निकल रहे हैं तो कंफर्टेबल रहना और कार ड्राइव करते वक्त स्लीपी बिल्कुल नहीं। आज का थॉट यही है भाई, लाइफ में स्पीड जरूर रखिए लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, बस रुकना नहीं है। तो आइए इसी के साथ हम नहीं रुकेंगे, सुनाएंगे ये गीत ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन 89.5।

अब एक क्विक ऑस्ट्रेलिया राउंड अप हो जाए। नेशनल लेवल पर माइग्रेशन रूल्स को लेकर फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट, बैकपैकर्स और वीजा ओवरस्टेज से रिलेटेड चेंजेस अनाउंस किए हैं। इस इशू पर गवर्नमेंट और ओपोजिशन की इंटरप्रिटेशन अलग है, इसीलिए फाइनल डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन को क्लोजली फॉलो किया जा रहा है। ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इमिग्रेशन और वीजा रूल्स ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो ऑफिशियल अपडेट्स को ही फॉलो करिए और सोशल मीडिया रूमर्स पर डिपेंड मत करिए। आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए भी एक बिग अपडेट है। एआई कंपनी एथ्रोपिक ने क्वींसलैंड में एक मेजर डाटा सेंटर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डील अनाउंस की है। प्रोजेक्ट की रिपोर्टेड वैल्यू अराउंड 32 बिलियन डॉलर्स है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर डिबेट भी हो रही है। एआई सिर्फ फोन्स और लैपटॉप्स तक लिमिटेड नहीं रहा, अब एनर्जी, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज को भी डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। आईएसए के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सब सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। सो ब्रिसवन वालों, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग विद मी। मैं थी आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे थे रेडियो ब्रिसवानी। याद रखिए, पॉजिटिव रहिए, कनेक्टेड रहिए और अपने ड्रीम्स को सीरियसली जरूर लीजिएगा। हैव अ ब्यूटीफुल फ्राइडे, हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड अहेड। और हाँ, कल सुबह फिर मिलेंगे। अब अगले हफ्ते मिलेंगे एक फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश स्टोरीज और फ्रेश एनर्जी के साथ। दिस इज आरजे चानी साइनिंग ऑफ। रेडियो ब्रिसवानी के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर ब्रिसबन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कानून तोड़ने वाली ताकतें सुरक्षा परिषद में बैठी हैं, यूएन प्रमुख ने की वैश्विक शक्तियों की आलोचना। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि जो वैश्विक शक्तियां खुद अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं, वो ही सुरक्षा परिषद में बैठी हैं। इससे सुरक्षा परिषद पंगु हो गई है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक संस्था में सुधार सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। F-35 की तकनीक चुरा सकता है चाइना, सऊदी अरब के साथ डील के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चेतावनी। सऊदी अरब को $24 अरब में 48 आधुनिक F-35 लड़ाकू विमान बेचने की अमेरिकी योजना के बीच एक बड़ी खुफिया जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि चाइना सऊदी अरब से अपनी मजबूत उपस्थिति, रक्षा संबंधों और जासूसी नेटवर्क का फायदा उठाकर स्टील्थ F-35 टेक्निक को चुराने की कोशिश कर सकता है। यमन ने मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान, वीडियो जारी कर हुती विद्रोहियों ने किया दावा। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने यमन में सऊदी अरब के F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। उन्होंने एक ही वीडियो में दो तरह के विजुअल शेयर किए हैं। पहले विजुअल में एक टारगेटिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया और दूसरे विजुअल में एयरक्राफ्ट का मलबा और उसके साथ हथियारबंद लोग पोज देते हुए नजर आए। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। एक 29 फाइटर जेट पर पाकिस्तानी फैला रहे झूठ, फैक्ट चेक में खुल गई पोल। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि पायलट की गलती के कारण लैंडिंग के समय भारतीय वायुसेना का MiG-29 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो शेयर किया जा रहा था वो असल में एक वीडियो गेम का फुटेज था। पीएम मोदी को जन्मदिन पर रूस से आया खास संदेश, पुतिन ने बताया असाधारण नेता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के व्यक्तिगत योगदान की सराहना की। इसके साथ ही पुतिन ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान उन्हें और उनके प्रतिनिधिमंडल को मिली शानदार मेजबानी के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे एंड 5 मिनट हो गए हैं 7 बजकर दोस्तों सुबह का सफर में आप शामिल हो गए हैं. मैं हूं आपकी साथी नीलम. ढेर सारा प्यार देना चाहेंगे आपको. आज है 18 सितंबर और की सुबह और अभी से लेकर 9 बजे तक हमारे खूबसूरत साथ होने वाला है. दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं आप, स्वागत कर लेते हैं आपका. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान.

दोस्तों बताइए क्या हाल है, क्या चल रहा है। वैसे बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है आज, और काम काज के लिए निकल गए हैं शायद आप, घर पर ही रहने वाले हैं आज, या फिर बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। आप खुद शायद कॉलेज यूनी के लिए जा रहे हैं, या फिर रास्ते में हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। चलिए सुबह का आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

दस तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन के लिए 13 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 24। आज बताया गया है विंड गस्ट रहेगा 25 किलोमीटर एन आवर। सैटरडे और संडे सनी डे रहेगा और टॉप्स रहेंगे 29। ओवर द वीकेंड मेलबर्न 8 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 24। विंड गस्ट बताया गया है 19 किलोमीटर एन आवर। और कैनबरा के लिए 3 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 22। सिडनी के लिए 8 डिग्रीज, सनी डे, टॉप्स रहेंगे 23। विंड गस्ट बताया गया है 13 किलोमीटर एन आवर। गोल्ड कोस्ट में बताया गया है 15 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 21। विंड गस्ट बताया गया है 22 किलोमीटर एन आवर। सैटरडे संडे भी सनी डे रहेगा और टॉप्स रहेंगे 26 डिग्रीज। सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 16 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 20। और एक्चुअली आज का टॉप सनशाइन कोस्ट में 20 रहेगा और विंड गस्ट बताया गया है 29 किलोमीटर एन आवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुबह के सफर में हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका और कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं हूं आपके साथ ही नीलम, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे आज।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365। और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: दोस्तों, सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं और इट्स 20 past 7। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं सुबह का सफर में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी कोई ट्रैफिक अपडेट्स नहीं है, लेकिन मिलते हैं तो जरूर बताएंगे। वैसे रास्ते पर है आप, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, हौले हौले सफर कीजिएगा हमारे साथ, मंजिल पे तो पहुंच ही जाएंगे आप। The point is कि आप वहां सही सलामत पहुंचे, तो take it easy।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो विज़वानी, आपकी अपनी पहचान। इट्स 7:30 और चलिए दोस्तों याद दिला दें कि ये अभी हम आपको बर्थडे विश करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आएंगे आपके साथ आपको ब्रेकफास्ट टेबल पर देखने कि क्या कर रहे हैं आप आज, क्या खा रहे हैं आज ब्रेकफास्ट में, कुछ बना रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ नहीं भी खा रहे हैं या फिर हल्का हल्का कुछ कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं शायद। जो भी आप कर रहे हैं देखते हैं थोड़ी देर में। और दोस्तों समय हुआ कि हम आपके घर आए और आपके साथ आपका बर्थडे, आपका स्पेशल डे सेलिब्रेट करें, विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और देना चाहेंगे ढेर सारा लव हमारी तरफ से आपको, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और एनिवर्सरीज या कोई फिर स्पेशल डे है आज यू नो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेस्ट विशेज उसके लिए भी। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं

सो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे, 36 आफ्टर 7। और चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। दोस्तों हमारे पास लास्ट वीक से आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, व्हाट्स ऑन योर ब्रेकफास्ट टेबल। और आई थिंक अच्छा लग रहा है क्योंकि नाउ आई कैन कम अप विथ सम नाइस रेसिपीज। और जस्ट चेकिंग इन कि आप खाना खा रहे हैं कि नहीं, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर वैसे कहते हैं कि जागने के एक और आधे घंटे के बीच में यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट। और कुछ लोग ऑब्वियसली अभी ढेर सारे डाइट्स हो गए हैं जहाँ पर आप फास्टिंग कर रहे हैं एंड लेट ऑन इन द मिड डे आप खाना खाते हैं, कुछ ऐसा वर्क हो रहा है आपके लिए। एंड सभी लोग कुछ ना कुछ के बीच में हमेशा रहते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप कई जैसे डायबिटीज़ है या फिर कोई भी आप टैबलेट्स खाते हैं, सुबह सुबह आपको खाना पड़ता है, तो आप खाली पेट खा नहीं सकते। यू नीड टू हैव सम फूड एटलीस्ट इन योर स्टमक बिफोर यू टेक द टैबलेट्स, या यू नो। और थायरोक्सिन अगर लेते हैं तो वो तो खाली पेट खाना चाहिए। तो ये सब आप जानते हैं, लेकिन हमारा मेन एम है कि हम ख्याल रखें कि वी आर ऑल ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट, वी आर ऑल हेल्थी इन द मॉर्निंग एंड वी आर नॉट स्किपिंग। तो मेरा यही एम है। सो टुडे हम लाए हैं मूंग डोसा रेसिपी। सो ये इसका प्रिपरेशन क्या है कि इसका प्रिपरेशन आपको नाइट बिफोर करना होगा, बहुत बिग डील नहीं है। सो आपको मूंग दाल लेना है जो ग्रीन वाला, और जो पूरे खड़े दाल है, टूटे हुए नहीं है। एंड एक कप मूंग दाल आपको लेना है, और 1/3 कप आपको राइस लेना है, एंड 3 टेबल स्पून आपको लेना है चना दाल, एंड 1 टीस्पून ऑफ मेथी। एंड अब इसको रात में आप, कल सुबह आपको बनाना है तो आप इसको भिगो दें, 2 ग्लास पानी में आप इसको अच्छी तरह से भिगो दें। एंड देन इन द मॉर्निंग आप जब ड्रेन करते हैं, इसको ड्रेन कर लें, सो इट विल हैव एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ सोक, विच इज़ गुड फॉर द मूंग, उसका जो आउटर कवरिंग है एंड एवरीथिंग, सो डाइजेस्टिव्स के लिए भी अच्छा है। तो जब नेक्स्ट डे इसको अच्छी तरह से ड्रेन करें और इसको ग्राइंडर में डालते हैं, ये जो पूरा मूंग राइस और चना दाल और मेथी का जो आपने भिगोया हुआ था उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं, 1 इंच एटलीस्ट जिंजर डाल दें, चिलीज डाल दें जैसा आप पसंद करते हैं। नहीं पसंद करते हैं चिली सुबह सुबह तो नहीं डालें, अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। एंड देन जीरा आप डाल सकते हैं इसमें, एंड इसको अच्छी तरह से आप ग्राइंड कर लें। और जैसे भी दाल पीसते हैं आप तो जानते हैं कि उसमें थोड़ा सा पानी तो लगता ही है, तो थोड़ा डोसा वाला मिक्सचर होना चाहिए उस तरह सा, यू नो, एकदम से रनी नहीं और एकदम से सख्त नहीं, तो आपको ऐसा मिक्सचर करना है। और उसमें फिर थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, सॉल्ट अगर अपने स्वाद मुताबिक जैसे आप पसंद करते हैं। और फिर तवे को हीट करें और उसमें आप जैसे डोसा बनाते हैं उस तरह से आप उसको अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर लें, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आप साइड में डालें, और एंड देन लेट इट कुक फॉर अ बिट। अगर एकदम पतरा सा होता है तो बहुत देर भी नहीं लगता है, एंड देन यू कैन जस्ट फ्लिप इट। अगर आप थोड़ा अच्छी तरह से आपने शायद यू फील कि अच्छी तरह से नहीं पका हुआ है, एंड देन यू कैन फ्लिप इट and then have it for your breakfast. So, तो ये मूंग दाल और चना का जो ये combination है, तो ये rich in protein है, और obviously it's plant-based protein, और अगर आप vegetarian है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि protein आप जब लेते हो तो आपको आपका पेट भरा रहता है, एंड यू डोंट फील हंग्री वेरी ऑफन। तो जैसे कि आप, यू फील फुल एंड सेटिस्फाइड विद द फूड दैट यू टेकन। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा फूड खाए एंड देन थोड़ी देर बाद, इतना शुगरी होता है एंड एक घंटे के बाद जो अच्छी तरह से जो प्रोसेस हो जाता है आपको फिर से भूख लगने लगता है, सो दैट्स नॉट इवन गुड फॉर यू। सो जब प्रोटीन आप खाते हो तो यू फील कि आपका पेट भर गया, यू फील सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव ईटन, एंड अमीनो एसिड्स जो
essential amino acids hai, antioxidants hai, dietary fiber hai. So chana dal and moong dal bahut hi beneficial hai. Aur agar aap ye darte hain apne breakfast mein aap include karte hain, then you're in a win-win situation. So bahut hi easy sa ye dosa, moong dosa recipe hum de rahe the aaj ke breakfast table ke liye. You can get it done tomorrow, hey? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो रिजवानी, आपकी अपनी पहचान. हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका.

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे जैसे हम एज होते हैं, हमारा जब एज बढ़ता है तो उसके साथ साथ ग्रेजुअली हमारे जो थिंकिंग, जो कैपेसिटी है, याद रखने की कैपेसिटी है, वो थोड़ा थोड़ा धुंधला होते जाता है। और इट कैन बी अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, एंड मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक पर्सन का जो डिक्लाइन होता है कॉग्निटिव, सोचने समझने याद रखने की शक्ति जो होती है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्यों डिफर करता है, इज जस्ट बिकॉज कि उनका जो कॉग्निटिव रिजर्व, एक वर्ड है और एक्चुअली दो वर्ड है, इसका मतलब है कि हमें जब किस तरह से हमारा जो ब्रेन है ये अडॉप्ट करता है या इम्प्रोवाइज करता है या अल्टरनेटिव वेज फाइंड करता है कि कोई काम करे जब हम कोई इंजरी या कोई डिजीज या एजिंग से ऑब्वियसली गो थ्रू हो रहे हैं, तो किस तरह से हमारा जो ब्रेन है ये अडॉप्ट करता है और कैसे फेस करता है, कैसे यू नो मेक्स थिंग्स वर्क। तो इस तरह से हमारे तो बेसिकली हमारे जो कॉग्निटिव रिजर्व है इसको अच्छा रखने के लिए डिमेंशा के ऊपर कुछ स्टडीज किए गए हैं। और नेहा सिन्हा इसे डिमेंशा स्पेशलिस्ट है, इन्होंने कुछ लाइफ चेंजेस अपने लाइफ में कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं जिस तरह जिसको लेकर आपका जो ब्रेन है उसको आप स्टिल एक्टिव, स्टिल क्वाइट हेल्थी रख सकते हैं। और सम हैबिट्स जो उन्होंने बताया है वो है, वन ऑफ दम इज कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, लर्निंग समझाया है कि अगर कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं आप या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, इट गेट्स बोथ योर हैंड्स वर्किंग एंड ये आपके ब्रेन को रिशेप करता है बेसिकली, और कॉग्निटिव और मोटो पाथवेज को फायर करता है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इज लर्न अ लैंग्वेज और लर्न अ इंस्ट्रूमेंट टू प्ले। एंड दूसरा वाला बताया गया है लाइफस्टाइल में चेंजेस में कि अपने जो स्लीप से कोई समझौता नहीं करना है, डू नॉट शॉर्ट चेंज स्लीप। सो अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, ये कॉग्निटिव इम्पेमेंट को 40% यू नो इंक्रीज करता है और अफेक्ट करता है 40%। एंड तो अगर आप सो नहीं पा रहे हैं और बेसिकली आपको इंसोम्निया है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर को देखें और बात करें इसके बारे में कि किस तरह से यू कैन ओवरकम दिस, क्या कर सकते हैं आप इसके बारे में, यू नो। एंड अगर आप जानबूझकर देरी में सोते हैं और बिकॉज आप बिजी है टीवी देखने में या कुछ ऐसा, तो मे बी हैव टू थिंक अबाउट दिस, यू नो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है आपको हियरिंग में कुछ ऐसे चेंजेस लग रहा है या फिर ब्लरी विजन हो रहे हैं आपको, या आप सोच रहे हैं कि आपके ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था लास्ट चेकअप में या फिर घर पर ही ब्लड प्रेशर मशीन है आपने चेक किया, तो इसको ऐसे ही डिसमिस नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि हियरिंग लॉस होता है, विजन लॉस होता है, हाइपरटेंशन होता है, ये ऑल लीड कर सकता है ब्रेन डैमेज के लिए। और अर्ली डायग्नोसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कहते हैं कि यू हैव टू मूव एटलीस्ट

0: ग्रीन्स खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रीन्स लेते हैं, तो ये लोअर करता है आपके ब्रेन रिस्क को। और अगर आप नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, यू नो, सत्संग करते हैं, ढेर लोगों से मिलते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, रियल कॉग्निटिव रिजर्व आपका ये बिल्ड करता है, तो बहुत अच्छी बात है। सो यू कैन डू ऑल दिस एंड मीनिंगफुल चीज़ों में अपने दिमाग लगाए। अगर आप केवल बैठकर स्क्रॉल करते हैं अपन अपने मोबाइल पर, तो ये, या फिर स्किप करते हैं केवल, किसी चीज़ पर दिमाग ही नहीं लगता। अगर टीवी के आगे बैठे हैं, चैनल्स इतने ढेर है, लेकिन कोई चीज़ पर आप एक टिक नहीं पा रहे, क्योंकि ये फ्लिट होता है आपका दिमाग इधर से उधर। तो कुछ पर्पसफुल आप करें, जर्नलिंग करें, या फिर कोई एक स्टोरी रीडिंग करें, यू नो, एंड या फिर क्रॉसवर्ड्स खेले, और यू नो, देर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, मीनिंगफुल थिंग्स। एंड सो दीज आर सम ऑफ द लाइफ स्टाइल चेंजेस दैट यू कैन डू दोस्तों, कि अपने कॉग्निटिव रिजर्व को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, ताकि जो आपका एज वी एज आप यू नो हेल्दी रहे, अपनी बॉडी से ही और अपने माइंड से भी। चलिए दोस्तों, एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गीत।
1: अरे कोई सास तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ,

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: दोस्तों 3 मिनट हो गए हैं 8:00 और 1 घंटे का सफर बाकी है हमारा और आपका. और दोस्तों कहते हैं कि हवाएं जो है वो मौसम का रुख बदलती है, तो दुआएं मुसीबतों का. दुआ देते रहिए, आप पर भी दुआओं की बारिश होती रहेगी. चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. हमारे साथ आप जुड़ गए हैं और 1 घंटे का सफर बाकी है, तो एंजॉय करते हैं.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और सुबह के सफर में आगे बढ़ते हैं। वैसे वेदर फोरकास्टर्स आर वार्निंग ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज एंटरिंग अ पोटेंशियली डेंजरस पीरियड एज द एल नीनो क्लाइमेट पैटर्न ग्रोज इन स्ट्रेंथ 2 weeks into spring and on the back of an exceptionally dry winter, ground conditions are becoming a growing bushfire risk, reports Weather Zone. Our capital cities and regional towns recorded below average rainfall during the 3 winter months, driven by strengthening El Nino. Meteorologists say the climate pattern weakens the trade winds that blow moisture-laden air towards eastern Australia from the tropical Pacific Ocean. To date, less than a millimetre of rain has fallen on Brisbane, while Sydney has recorded just 6.2 millimetres. I guess the fire वार्निंग दे रहे हैं। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ में है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, होरा वेदर आउटलुक ऑस्ट्रेलिया के लिए बताया गया है दोस्तों। चलिए एंजॉय करते हैं ये गीत।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Queensland di navi sarkar Brisbane layi vadde kaam poore kar rahi hai. ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬਨ।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: तो सुबह के सफर में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नजर चाहे कितनी भी खुली क्यों ना हो, यदि समझ बंद हो तो सत्य दिखाई नहीं देती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया से इसको हमने लिया। और फेंगशुई के बारे में बात करते हैं तो समटाइम्स हम आपको फेंगशुई टिप्स देते ही रहते हैं, लेकिन अगर अगर आपके घर पर आप सोच रहे हैं कि आपका जो किचन है बहुत निग्लेक्टेड है या फिर आपका जो क्लोजेट है बहुत मैसी है और कपड़े बाहर निकल रहे हैं, आपका जो बेडरूम है बहुत ही अनटाइडी है, इतने सारे चीज़ है टूवर्ड्स फ्रंट एंट्री वे ब्लॉक्ड है एंड स्टफ, लेकिन ये क्यों है? तो फेंगशुई समझाता है कि द क्लटर इन योर होम मे नॉट बी रैंडम, केवल ऐसे ही नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है एरियाज ऑफ योर लाइफ जहाँ पर एनर्जी ब्लॉक्ड है या स्टैग्नेंट है। तो ऐसे ही नहीं केवल घर को लेकर, ये आपके लाइफ में जहाँ पर एनर्जी ब्लॉक्ड है, जैसे कि अगर आप अपना बेडरूम का जो क्लटर है उसको लेते हैं, इट्स अ मेंट इज बेडरूम क्लटर कहते हैं इज इक्वल टू योर मेंटल क्लटर। तो बेसिकली अगर आप ओल्ड वरीज लेकर चल रहे हैं या कॉन्वर्सेशंस है जो पूरे नहीं हुए हैं या सुलझे नहीं हैं और कोई इमोशनल बैगेज है, कोई बात है आपके दिल में, आप उसको लेकर चल रहे हैं काफ़ी दिन से, उसको उसका जो वेट है आप कैरी कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है आपके बेडरूम में शो करता है अगर इट्स अनकैम्प्ड, आपने डस्टिंग नहीं की है, सो इट्स या फिर टाइडी अप नहीं किया है, वॉशिंग नहीं किए हुए है, तो या वैक्यूमिंग नहीं किया हुआ है आपके बेडरूम में और अच्छी तरह से आपके बेडशीट्स नहीं मेड है, सो ये सब चीज़ जो होते हैं, विंडोज इवन क्लीन नहीं है, तो ये दिखाता है इस मेंटल क्लटर। सो किस तरह से आप इसको हील कर सकते हैं, कहते हैं कि लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू एंड बिलोंग्स टू यू इन दिस चैप्टर ऑफ योर लाइफ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम 20s में चाहते थे या फिर सोचते थे हमारे लिए ठीक है, अपने 40s में या 50s में या 60s में आप है अभी आपका थिंकिंग डिफरेंट हो गया है, आप उसी चीज़ों को पसंद नहीं करते, शायद उतना ही लगाव नहीं है चीज़ों से, तो लेकिन कोई बात ऐसी होती है जो हमारे दिल पर रखा होता है जब सुलझे नहीं है, तो उसको कहते हैं कि आपके मेंटल पर, आपके मेंटल दबाव है आप पर, तो उसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर क्लोजेट आपका ओवरफ्लो हो रहा है तो मे बी यू अटैच टू ऑल वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ, जिस तरह से आप सोच रहे थे पहले थे उस तरह पर अभी आप है, जैसे अभी आप नए हैं उस वर्जन को लेकर आप स्टिल सोच रहे हैं कि सम डे, लेकिन ऐसा नहीं है। सो जो अभी आप नए हो उसको आप लेट गो करना चाहिए, सो ये रिफ्लेक्ट करता है, इस तरह से आप सोच रहे हैं उसी तरह से वर्क होता है। अगर आपका ऑफिस अभी सोचिए और ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का जो ऑफिस रहता है एकदम नीट एंड टाइडी रहता है और कुछ लोगों का एकदम मैसी रहता है, और कहते नहीं और कहते हैं कि कितना मैसी है, लोग कैसे काम करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इतने सारे आइडियाज हैं लेकिन और नॉट इनफ कमिटमेंट, आप इतने सारे कुछ ओपन करते हो लेकिन छोड़ देते हो, फिर ओपन करते हो छोड़ देते हो, इतने सारे आइडियाज हैं लेकिन किसी चीज़ पर आपका दिल नहीं लगा है आप, सो यू हैव टू चूज वन क्लियर पाथ। अभी जब हम नर्सिंग पढ़ते थे तो हम जब प्रोफेशनल एथिक्स में स्टडी कर रहे थे, एक टाइम था क्या कहते हैं सब्जेक्ट था, तो वहाँ पर कहते तो हमें बताया गया था कि अगर कहीं पर भीड़ हो उसका मतलब नहीं कि है कि वहाँ पर बहुत बिजी है, वह सब चीज़ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छी तरह से जो भीड़ है उसको अच्छी तरह से चैनल नहीं किया गया है, तो जरूरी नहीं है कि आप भीड़ है जहाँ पर वहाँ पर बहुत अच्छी बात हो रही है, यू माइट जस्ट ज्वाइन इन, ऐसा नहीं है दोस्तों। सो ऐसा है कि वहाँ पर शायद अच्छी तरह से चैनल नहीं किए गए हुए, जो क्राउड को मैनेज नहीं किया गया है, सो दैट्स हाउ। लेकिन यहाँ पर अभी हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, सो अगर मैसी ऑफिस है, सो देयर सो मेनी ओपन टैब्स, लेकिन किसी को किसी चीज़ पर आप
ठहरे नहीं हुए हैं, ब्रोकन आइटम्स या अनफिनिश चैप्टर्स है. सो यू नो टूटे हुए चीज़ है, टूटे फूटे चीज़ है, उसको अगर रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर करें, रिप्लेस कर सकते हैं तो रिप्लेस करें, और अदरवाइज लेट देम गो. सो ऑल दिस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, निग्लेक्टेड अगर किचन की बातें होती है तो बेसिकली आप सर्वाइविंग मोड पे है, आप नोरिश नहीं कर रहे हैं अपने आप को. अभी आप देखोगे जो किचन में, जहाँ पर आप देखोगे कि आई बिलीव अगर आप सोच रहे हो कि सभी चीज़ बैलेंस्ड है, वहाँ पर आपको सभी कुछ ब्राइट इटसेल्फ लगने लगेगा, और वहाँ पर सभी चीज़ जो नोरिश करता है आपको. और अगर जो निग्लेक्टेड किचन होते हैं, वह बेसिकली यू आर जस्ट ऑन द सर्वाइविंग मोड एंड नॉट ट्रूली नोरिशिंग योरसेल्फ. So, you know, start treating yourself like someone worthy of abundance, you know. So, you have to treat yourself good. और कोई आपको अच्छा ट्रीट नहीं करेगा अगर आप खुद को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे. दोस्तों, चलिए एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गीत.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: दोस्तों, आधे घंटे का सफर बाकी है हमारे और आपके साथ का। सॉरी याद दिला दे कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है। आई गेस इतनी ढेर सारी बात की मैंने। एनीवे, एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे, फिल्म हाउसफुल से इसको हमने लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े ही समय बाकी है। और कहते हैं कि प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस जगत का सबसे महंगा सुख है, और इट्स फ्री ऑफ चार्ज, पैसे नहीं लगते इसको। प्रेम बांटना चाहिए, लव स्प्रेड होने से बढ़ता है, लेकिन हम उस पर बहुत भारी क्या कहे, थोड़े थोड़े में बांटते हैं प्रेम और लव को। तो फिर जितना बांटोगे उतना ही मिलेगा दोस्तों, एडजस्टमेंट करते हैं

तो बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, फिर बेशर्म से इसको हमने लिया। और जो कि वार्म वेदर आने को है एंड अभी तो स्प्रिंग है, बट द वेदर इज चेंजिंग एंड कुछ दिन में यू नो डे टाइम में वार्म रहता है। एंड अगर आप ऐसे पर्सन है जो वाटर इनटेक आपका बहुत मुश्किल से होता है, आप बहुत पानी पीना पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं यू नो रियली में कि पानी उनको अच्छा नहीं लगता है पीने में, तो ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं ऐसे सोडल्स पीते हैं या फिर स्वीट ड्रिंक्स पीते हैं ऐसे या फ्रूट जूसेस पीते हैं तो। लेकिन अगर आपको ऐसी दिक्कत है कि आपको पानी अच्छा नहीं लगता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मिल्क नहीं अच्छा लगता है यू नो एंड अनफॉर्चुनेटली हाँ, अगर आप पानी पीने में आपको दिक्कत होती है तो आप उसमें मिंट छोड़ सकते हैं या फ्रूट कोई अच्छा पसंद आता है आपको उसमें काट के स्लाइस छोड़ दें, जैसे कि ऑरेंज स्लाइस आप उसमें डाल दें एंड इवन आप उसमें क्यूकम्बर का स्लाइस भी डाल सकते हैं एंड यू नो एंड हनी अगर पसंद करते हैं, थोड़ा स्वीट लाइक करते हैं, उसमें थोड़ा सा हनी भी डाल दें एंड ये एंश्योर करेगा कि आप थोड़ा पानी आपका इनटेक अच्छा रहे। आपको पानी पीकर अपने आप को फ्लड नहीं करना है, बस इतना ही पीना है जिससे आप यू नो एटलीस्ट यू नो कहते हैं 6 ग्लासेस पीना चाहिए, लेकिन 6 से ज़्यादा भी आप पी सकते हैं, स्पेशली इफ़ इट्स अ रियली रियली हॉट डे यू नो एंड एक ग्लास कितना होल्ड करता है, 120 ml एटलीस्ट, सो अबाउट 1-1.5-2 liters तक अगर आप पानी पीते हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों अपने आप को अभी से आप ट्रेन करते हैं आप यू नो अपने आप को लुक आफ्टर करने के लिए, गेट योर सेल्फ ड्रिंकिंग वोडा। और ढेर तरह की पानी होती है जैसे कि लेमन वोडा होता है और जिंजर वोडा होता है, मिंट वोडा होता है, क्यूकम्बर वोडा होता है, हनी वोडा होता है, तो ढेर तरह की होते हैं। तो जो चीज़ें आपको पसंद है पानी में आप वो पानी में डाल कर पिए, इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप यू नो यू वॉन्ट बी लूजिंग बट आपका जो स्किन है कॉम्प्लेक्शन है अच्छा रहेगा, हाइड्रेटेड लुक रहेगा, आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो सब वॉश आउट होगा। एंजॉय करना है ये गीत।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

0: दिलों को झंकृत करें,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

कौन, वो अगर बस्ती में रहता है तो वीराने में कौन, वो अगर काबे में रहता है तो बुतखाने में कौन। लेकिन इधर हिंदू का ये कहना है कि मुस्लिम है बुरे, और इधर मुस्लिम का यही कहना है कि हिंदू है बुरे, लेकिन

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं कुछ चुने हुए ओल्ड विंटेज मजहबी कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई कुछ चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक। अभी थोड़ी देर में 9:30 से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम आज जुमा है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड के हजरत बशीर अहमद दीवान के साथ।

0: और ख्याल फिक्र में ढलता है अब मजमू मोहम्मद का।
1: अलिफ अल्लाह का है या अलिफ अल्लाह का है या कदे मौजू मोहम्मद का। अरे मुशद्दद लाम है, मुशद्दद लाम है।

0: दरबार में मसनद नशी है या इबादत में,
1: शजर में बरगु में है वो कमर में या के जिलवत में,
0: मदी

0: और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।
1: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।